अस्सलामु अलैकुम। हम इस दुनिया में नंगे आए हैं और नंगे जाएंगे, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, लेकिन इस जिंदगी में हम काफी लोगों को मिलते हैं, लेकिन एक ही दफा हम किसी को मिलते हैं कि मिलने के बाद आपकी पूरी दुनिया खुश हो सकती है अगर आप वो खुशी चाहते हैं। वो चीज जब आती है पकड़ना चाहिए, और वो चीज का नाम है प्यार।

प्यार का मतलब है काफी चीजें, लेकिन प्यार जो हम समझते हैं वो प्यार है जो एक ही दफा आता है और जब आता है पकड़ना चाहिए।